0: difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. मेरा नाम है नबील और आज एक नए शो के साथ चलिए शुरुआत करते हैं. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंचरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो की शुरुआत होगी न्यू साउथ वेल्स सरकार की एक नई पहल से, जहाँ माइग्रेंट वर्कर सेंटर की शुरुआत की गई है जो अस्थाई वीजा धारकों और प्रवासी कामगारों को कार्यस्थल पर शोषण, असुरक्षित हालात और इमिग्रेशन से जुड़ी समस्याओं में मदद करेगा. इसके बाद बात होगी एक सर्वे की जिसमें सामने आया है कि कई प्रवासी श्रमिकों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ वेज थेफ्ट का गंभीर मुद्दा भी उजागर हुआ है. उसके बाद SBS एग्जामिन्स के एक खास अंश में हम समझेंगे कि बढ़ती कीमतों और फ्यूल प्राइस शॉक से बचने के लिए बेहतर कानून और नीतियों में क्या सुधार ज़रूरी हो सकते हैं. और अंत में महाराष्ट्र के आशीष जोशी की प्रेरणादायक कहानी, जो अपनी जान जोखिम में डालकर अब तक सैकड़ों बेजुबान जानवरों को बचा चुके हैं और लगातार वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू में सक्रिय हैं. और हाँ, आज के शो में आपके लिए एक स्पेशल कॉन्टेस्ट भी है. आज आप जीत सकते हैं डबल मूवी पासेस का मौका. फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के लिए. ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी लग रही है. ट्रेलर से बड़ा मज़ेदार ट्रेलर आया है और इस मूवी में नज़र आएंगे वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर. अगर आप भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो एक आसान से सवाल का जवाब देना होगा और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में. उससे पहले सुन लेते हैं आज का न्यूज़ फ्लैश. तो बने रहिए SBS हिंदी पर. मंगलवार 26 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. घरों और छोटे व्यवसायों के बिजली बिल में पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में 10% तक की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है. ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर ने अंतिम डिफ़ॉल्ट मार्केट ऑफर को कम करने का फैसला लिया है, जो ये तय करता है कि बिजली कंपनियां अधिकतम कितनी कीमत वसूल सकती हैं. साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में घरेलू बिजली की कीमतों में 10.7% तक की कमी आने की उम्मीद है. एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन ने कहा है कि सस्ती बिजली का कारण रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ता उपयोग है. बॉक्सर यानी ब्यूरो ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च ने कहा है कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस पर घटता भरोसा एक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है जिसमें लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठा रहे हैं. बॉक्सर द्वारा जारी नई रिसर्च में सामने आया है कि न्यू साउथ वेल्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर जनता का भरोसा अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. करीब 2000 एडल्ट्स के सर्वे में केवल 34% लोगों ने कहा कि जस्टिस सिस्टम विक्टिम्स की ज़रूरतों को पूरा करता है, जबकि सिर्फ 23% लोगों का मानना है कि मामलों को समय पर निपटाया जाता है. बॉक्सर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैकी फिट्जगेरल ने कहा है कि पुलिस पर भरोसे में सबसे तेज़ गिरावट देखी गई है, जो 2019 में 70% से घटकर 56% रह गई है. फेडरल सरकार ने स्टोलन जनरेशन्स के सर्वाइवर्स की मदद के लिए अतिरिक्त $2.6 मिलियन की फंडिंग की घोषणा की है. ब्रिंकिंग देम होम रिपोर्ट को जारी हुए लगभग 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके 83 सुझावों में से केवल 5 को ही लागू किया गया है. हालांकि सरकार ने अतिरिक्त फंडिंग दी है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुआवजा सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें अन्य सुधार और मदद भी शामिल होनी चाहिए. नॉर्दर्न टेरिटरी में डिप्थेरिया के अब तक 163 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 48 रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया के मामले हैं जो सांस लेने पर असर डालते हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इस आउटब्रेक में कुल मामलों में कमी आई है और फेडरल सरकार का ध्यान मामलों की संख्या को और कम करने पर है. फेडरल सरकार ने डिप्थेरिया के इलाज और वैक्सीनेशन के लिए टेरिटोरियंस के लिए $7.2 मिलियन की फंडिंग दी है. नॉर्दर्न टेरिटरी के स्वास्थ्य मंत्री स्टीव एटकिंगटन ने कहा है कि इस फंडिंग में से $2 मिलियन एबोरिजिनल कम्युनिटीज के साथ कम्युनिकेशन और जागरूकता के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे. अमेरिका की सेनाओं ने सदर्न ईरान में मिसाइल साइट्स और उन बोट्स पर हमले किया है जो माइंस बिछा रहे थे। ये कार्रवाई पहले से ही कमजोर सीज फायर को और ज्यादा खतरे में डाल रही है, जबकि ईरानियन नेगोशिएटर शांति वार्ता के लिए दोहा पहुंच चुके हैं। शांति समझौते की उम्मीदों को एक और झटका तब लगा जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनन में ईरान समर्थित हिजबुल्ला को क्रश करने की बात कही। ईरान ने मांग की है कि किसी भी पीस एकॉर्ड में लेबनन में चल रही लड़ाई को भी शामिल किया जाए। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरेबिया, खतर, पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और जॉर्डन को इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने चाहिए और इसे ईरान के साथ किसी भी समझौते की शर्त बनाया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। बहरैन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2020 में यह समझौता किया था, जो 25 साल में किसी अरब देश और इसराइल के बीच पहला बड़ा समझौता था। और अब खबर भारत से। नई दिल्ली में आज मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की क्वाड बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और जापान के तोशिमित्सु मोटेगी शामिल हैं। इस बैठक का मकसद क्वाड को फिर से सक्रिय करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। चर्चा में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही पश्चिम एशिया और यूक्रेन संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और चाइना के बढ़ते प्रभाव से जुड़ी चिंताओं पर भी विचार किया जाएगा। भारत इस समय क्वाड की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए यह बैठक नई दिल्ली में हो रही है। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। SBS हिंदी पर वापस जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ फ्लैश के बाद हम अपनी पहली रिपोर्ट की तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको कॉन्टेस्ट की बात की थी उसका समय आ चुका है। आज का कॉन्टेस्ट सवाल ये है कि एक मूवी है जवानी तो इश्क होना है, नई मूवी है और इसके लीड में है वरुण धवन। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और इनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी इसमें स्टार कर रही हैं। तो आपको बस ये बताना है कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, और इसका जवाब आपको लिख भेजना है हमारे फोन नंबर 04397997 पर। SMS करिए अपने नाम के साथ और अपना ईमेल आईडी जरूर लिखिएगा, ताकि अगर आप विजेता हुए तो हम आपको इस मूवी के डबल मूवी पास जो है वो हम आपको भेज सकें। सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, है जवानी तो इश्क होना है जो नई मूवी है वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की, इसके डायरेक्टर कौन है। 04397997 पर आप अपना नाम और अपना जवाब अपने ईमेल एड्रेस के साथ ज़रूर भेजिए, हमें आपकी एंट्री का इंतज़ार होगा। आगे बढ़ते हैं और पहली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने अस्थाई वीज़ा धारकों की मदद के लिए माइग्रेंट वर्कर्स सेंटर की शुरुआत की है, जो प्रवासी कामगारों को कार्यस्थल शोषण, असुरक्षित हालात और इमिग्रेशन से जुड़ी समस्याओं में सहायता देगा। इस पहल के लिए सरकार ने अगले 4 वर्षों में $6.5 मिलियन की फंडिंग दी है। क्या है ये पूरा मामला, आइए सुनते हैं भव्य पांडे की इस रिपोर्ट में।
3: तेईस साल की उम्र में सैमुअल ज़ुलुआगा ने अपने घर कोलंबिया को छोड़कर सिडनी में नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लिया। एक बार्बर शॉप ने उन्हें टेम्पररी वर्क वीजा के साथ स्पॉन्सर करने की पेशकश की और शुरुआत में उन्हें लगा कि उनकी किस्मत चमक गई है। हालांकि धीरे धीरे चीजें बदलने लगी।
4: After about a year, I noticed that my employer had stopped paying my superannuation. At the time, I didn't fully understand what that meant. I thought myself it might be a mistake.
3: सैमुअल का कहना है कि टेम्पररी वीजा पर होने की वजह से वे इन मुद्दों पर बोलने से डरते थे। उन्हें नहीं पता था कि शिकायत करने से ऑस्ट्रेलिया में उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
4: One day I complained when I was told to clean the toilets, nothing that was hired for. In response, my employer just said, "You're fired, pack yourself, I'll go home." Just like that, I had lost my job and my visa sponsor.
3: सुलुआगा के एम्प्लॉयर ने उनकी अनयूज्ड एनुअल लीव्स की पेमेंट भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय वे छुट्टी लेने से डरते थे कि कहीं उनका बॉस नाराज ना हो जाए। आखिरकार यूनियंस और सपोर्ट सर्विसेज की मदद से जुलुआगा को उनका भुगतान दिया गया।
4: This made a real difference in my life. It wasn't just about the money. It changed how I saw my situation and showed me that I wasn't alone.
3: इस महीने जारी माइग्रेंट जस्टिस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने माइग्रेंट वर्कर्स के सामने आने वाली समस्याओं की गंभीरता को उजागर किया है। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में पाया गया है कि टेम्पररी वीजा होल्डर्स यानी अस्थाई वीजा धारकों में से लगभग 2/3 को कम वेतन दिया जा रहा था, जबकि केवल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय छात्र ही हर हफ्ते $60 मिलियन से अधिक की तनख्वाह खो रहे थे। 1/3 से अधिक लोगों ने बताया कि वे ABN या कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट के तहत काम कर रहे थे। हालांकि यूनियंस न्यू साउथ वेल्स के प्रेसिडेंट मार्क मोरी का कहना है कि प्रवासी ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
5: Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do. We know in farming communities, we know in retail, hospitality, construction, we're all short of skilled labor. We're all short of people who just want to start their first jobs in the economy, and we're not a big enough country. We're built on migration. We need these workers here.
3: अब जुलुआगा को मिली वही डेडिकेटेड सपोर्ट पूरे न्यू साउथ वेल्स के माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने सिडनी CBD में अपना पहला डेडिकेटेड माइग्रेंट वर्कर्स सेंटर शुरू किया है, जो कि अंडर पेमेंट यानी कम वेतन, अनसेफ कंडीशंस यानी असुरक्षित स्थितियां और एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर चुके वर्कर्स की मदद करेगा। इस मामले में रीजनल न्यू साउथ वेल्स में आउटरीच सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, ताकि दूर दराज में रहने वाले समुदायों तक भी ये सेवाएं पहुंच सकें। ये सेंटर्स हर साल लगभग 2000 एट रिस्क वर्कर्स को सांस्कृतिक तौर से संवेदनशील और सामुदायिक सपोर्ट प्रदान करेगा। इसके लिए न्यू साउथ वेल्स सरकार ने अगले 4 वर्षों में $6.5 मिलियन की फंडिंग दी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्रिस मिंस ने कहा है,
6: We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, if something doesn't feel right, then you can come to the migrant workers center. They will explain your rights, help you through the system, and make sure that you get everything that you're legally entitled to.
3: इन सभी नई सेवाओं का मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज ने स्वागत किया है। सोमाली काउंसिल न्यू साउथ वेल्स की प्रेसिडेंट उबाह गैब्रिस कहती हैं,
7: If you don't know your rights, you don't know what if you actually have, you being taken advantage of. So what I love about this kind of space is people can come and actually talk to you about what they're going through, and they will receive advice and actually legal help as well, legal support.
3: SBS News के लिए जेनेवीव लेमांड और विंग क्वान की इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे।
8: SBS स्पोर्ट खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह, साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
9: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
10: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
11: SBS audio app आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS audio app एकदम मुफ्त है, इसे App Store या Google Play से डाउनलोड करें।
9: आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
12: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
13: SBS Learn English helps Australians speak, understand and connect.
2: एड ब्रेक के बाद एक बार हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील और आज के शो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारा आज एक कॉन्टेस्ट का सवाल भी है। एक नई मूवी आई है जवानी तो इश्क होना है, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है और उसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े हैं और इसके डबल मूवी पास जीतने का मौका है आपके पास SBS हिंदी पर। हमने सवाल ये पूछा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं। 0439799767 पर आपको मैसेज करके बताना है और आपको अपना नाम और ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आप विजेता हुए तो हमें आपकी ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होगी आपको टिकट भेजने के लिए, तो इसको ज़रूर सुनिश्चित करें। और अभी तक काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं, अभी तक मैं नाम ले लेता हूँ कुछ पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने भेजा है। अनुज, मनीषा, नैंडी, आलोक, संदीप, हैरी, जफ़र और प्रीति राय, इन सब लोग ने अपने जवाब भेजे हैं, क्या सही हैं क्या गलत हैं और क्या वो लकी विनर होंगे कि नहीं, ये आपको पता चलेगा बहुत जल्द, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट आज ही शुरू हुआ है। लेकिन आप भी अपना जवाब भेजिए 0439799767 पर। आगे बढ़ेंगे जब तक आप और लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे पास संदेश आते हैं, तब तक दूसरी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक नए सर्वे में सामने आया है कि प्रवासी श्रमिकों में से करीब 2/3 को पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। महामारी के बाद हुए इस बड़े अध्ययन में ये भी पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से हर साल अरबों डॉलर की मजदूरी का नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट में अहम खुलासे हुए हैं और छात्र अपने अनुभव अनुभव बता रहे हैं। आइए जानते हैं नताशा कॉल की इस रिपोर्ट में इसके बारे में। और
14: ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी लोगों की कार्य स्थितियों पर हुए अब तक के सबसे बड़े सर्वे में बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित तरीके से कम वेतन दिए जाने के सबूत मिले हैं। माइग्रेंट जस्टिस इनिशिएटिव की इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2/3 प्रवासी लोगों को फेयर वर्क एक्ट के तहत तय न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि अकेले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को हर साल करीब 3.18 बिलियन डॉलर तक का नुकसान कम वेतन के रूप में उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि ये अध्ययन ये भी उजागर करता है कि कई नियोक्ता किस तरह जानबूझकर इस शोषण को छुपाने के तरीके अपनाते हैं, जिससे असल स्थिति सामने नहीं आ पाती।
15: मैं कार्तिकेय हूँ एंड मैं अभी एडलेड में पढ़ाई कर रहा हूँ, यूनी एडलेड यूनिवर्सिटी में
14: जी।
15: एंड मैंने बीच में काम किया है एवियन पे, एक ट्यूशन एजेंसी के लिए, जो कि स्टूडेंट से सपोज $150 चार्ज करती थी फॉर एन आर, एंड दे के वो मोस्ट प्रॉफिट्स रखते थे एंड मुझे $50 आते थे। ये अरेंजमेंट था मेरा उनके साथ और ये मैंने काफ़ी टाइम तक किया उनके साथ। और मेरे यहाँ पे ऐसे बहुत दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जो ABN पे काम कर रहे हैं, अलग अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग चीज़ों पे, एंड उन सबको बिलो मिनिमम वेज मिलता है एंड वो भी कम मिलता है, ज़्यादा घंटे काम करते हैं एंड कोई सुपर एनुएशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, कोई पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। अभी तो मैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो जब ये जॉब लगी उसके बाद तो सही था, इस एज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये जॉब मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि सुपर एनुएशन करके कुछ होता है। जब मैं यहाँ पे नया नया आया था तो मेरी पहली जॉब उस ट्यूशन एजेंसी में थी, तो मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ के तौर तरीके क्या है। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला अच्छा एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है, हमारे राइट्स क्या है, वर्क राइट्स क्या है। बट मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जो अभी भी ऐसा ही काम कर रहे हैं।
14: और ये आवाज़ है समीर नामक व्यक्ति की, लेकिन ये उनका असली नाम नहीं है क्योंकि वे अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं।
16: We were never issued either a payslip or any sort of invoice or receipt. There was no paperwork. There was absolutely no clarity or transparency on like how much you're getting paid, what are you getting paid.
14: समीर जब पहली बार वर्किंग हॉलीडे वीजा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उस समय कोविड महामारी अपने चरम पर थी और हालात बेहद अनिश्चित थे. शुरुआत के कुछ महीने उनके लिए आसान नहीं रहे. लगातार नौकरी ढूंढने की कोशिश और अस्थिरता के बीच आखिरकार उन्हें एक टेकअवे पिज्जा चेन में काम मिल गया. समीर बताते हैं कि उन्हें वहां कर्मचारी की बजाय एक एबीएन के तहत ठेकेदार के रूप में रखा गया था, जिससे उनके काम की शर्तें और भुगतान का ढांचा सामान्य रोजगार से काफी अलग हो गया.
16: No superannuation throughout the 19 months of employment. No weekend penalty rates. No evening rates, because we always start work from 5 p.m. and on weekends we were working up to 3 a.m. in the morning. So there was no consideration of the evening rates or late nights rates.
14: आखिरकार समीर ने वो काम छोड़ दिया और कानूनी सलाह लेने का फैसला किया. बाद में रेडफर्न लीगल सेंटर की मदद से उन्होंने अपनी कमाई का हिसाब लगाया. समीर के अनुसार उन्हें अब भी चोरी किए गए वेतन के रूप में $50,000 से ज्यादा की राशि मिलनी बाकी है. अधिवक्ताओं का कहना है कि समीर जैसे लोगों के अनुभव किसी एक मामले तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये देश भर में प्रवासी लोगों के साथ हो रहे शोषण के एक लंबे और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा हैं. माइग्रेंट जस्टिस इनिशिएटिव द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े सर्वे में ये गंभीर तस्वीर सामने आई है कि कई प्रवासी कामगारों को व्यवस्थित रूप से कम वेतन दिया जा रहा है. 2024 में किए गए इस अध्ययन में देश भर के लगभग 10,000 प्रवासी कामगारों के साथ प्रतिक्रियाएं ली गईं, जिसमें शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र, स्पॉन्सर्ड वर्कर्स, ग्रेजुएट्स, बैकपैकर्स और टेम्पररी वीजा होल्डर. इस महीने पहली बार जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अकेले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को हर साल करीब $3.18 बिलियन तक का नुकसान कम वेतन के रूप में उठाना पड़ता है. वहीं सर्वे में शामिल सभी प्रवासी कामगारों में से लगभग एक चौथाई को प्रति घंटे कम से कम $10 तक कम भुगतान किया गया. माइग्रेंट जस्टिस इंस्टीट्यूट की सह कार्यकारी निदेशक बसीना फारबेनब्लम इस रिपोर्ट की प्रमुख लेखकों में से एक हैं. वे बताती हैं,
17: We found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australian law. We also found that 3/4 were hired in insecure arrangements, either on an ABN or as casual workers.
14: बसीना का कहना है कि सर्वेक्षण से न केवल कम वेतन और असुरक्षित रोजगार की व्यापक समस्याएं उजागर होती हैं, बल्कि ये भी पता चलता है कि नियोक्ता कार्यस्थल पर होने वाले शोषण को कैसे छिपा रहे हैं. उनका कहना है कि आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रवासी कामगार को जितना कम वेतन मिलता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि उन्हें अन्य उल्लंघनों का सामना करना पड़े, जैसे कि वेतन पर्ची न मिलना या भ्रामक वेतन पर्ची मिलना, नकद भुगतान, वेतन में कटौती या पेंशन का भुगतान न होना.
17: And it's all of that other non-compliance that then allows the employer to conceal the underpayment. So you don't have pay slips showing what you were paid or the correct hours that you worked, paid in cash. You're a casual worker, so there isn't necessarily a record of when you're working or how you're working. And it then becomes really hard for the migrant worker to prove the hours they worked and what they were actually paid.
14: अध्ययन से पता चलता है कि प्रवासी श्रमिकों को बिना हिसाब किताब के भुगतान करने और नियमों का उल्लंघन छिपाने के लिए एबीएन का दुरुपयोग एक प्रमुख रणनीति बन गया है. सर्वेक्षण में शामिल एक तिहाई से अधिक प्रवासी श्रमिक यानी 35% एबीएन के तहत कार्यरत थे, जो सामान्य ऑस्ट्रेलियाई कार्यबल की तुलना में 4 गुना से अधिक है. रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि अधिकतर मामलों में ये श्रमिक संभवतः गलत तरीके से वर्गीकृत कर्मचारी थे.
17: We actually found that among those ABN workers and casual employees, 40% were not even paid the minimum wage. And that's twice the rate of people who are hired as permanent employees. So it's very clear that it makes people really vulnerable and that we have a lot of employers taking advantage of of migrant workers by putting them in these insecure arrangements.
14: माइग्रेंट वर्कर सेंटर के सीईओ मैट कनकल का कहना है कि प्रवासी श्रमिकों का शोषण करने के लिए एबीएन नंबर का रणनीतिक उपयोग करके उन्हें ठेकेदार के रूप में गलत तरीके से नियोजित करना कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन ये और अधिक प्रचलित होता जा रहा है.
18: Employers are increasingly using sham contracting arrangements to confuse workers and avoid paying them the entitlements that they owed as employees. The ABN or sham contracting issue has been an issue for a really long time, but it is on the increase as witnessed in this report.
14: उनका कहना है कि व्यवस्थित रूप से कम भुगतान करना किसी एक उद्योग तक सीमित नहीं है.
18: There was a kind of spate of stories a few years back about hospitality and horticulture or agriculture. Those industries remain sectors of the economy where wage theft and other exploitation is rife. But the work or the workers that we come across in our work at the Migrant Workers Centre are from all sectors, blue collar, white collar, skilled jobs on skilled visas, and folks working in entry level jobs across a range of different sectors.
14: कनकल कहते हैं कि कई प्रवासी श्रमिक एक तरह की दोहरी इनसिक्योरिटी में जीते हैं. उनके पास ना तो स्थिर नौकरी होती है और ना ही रहने की पूरी सुरक्षा. ऐसे हालात में वीजा खोने का डर हमेशा उनके सर पर बना रहता है और यही डर अक्सर उन्हें अपनी नियोक्ताओं के खिलाफ शिकायत करने की आवाज उठाने से रोक देता है. वे कहते हैं कि नए प्रवासियों के लिए शिक्षा और सलाह में सुधार करना भी आवश्यक है.
18: Workers can't enforce rights they don't know they have. So targeted early arrival information and education programs are vital if we want to ensure that everyone understands their rights and how to enforce them.
14: SBS News से Angelica Wade की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है Natasha Call ने SBS हिंदी के लिए.
9: आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया. SBS विविधताओं का एक संसार. देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर.
19: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है. एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है. सुनिए ताज़ा खबरें, विचार और कहानियाँ SBS हिंदी से जब चाहें. बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट. SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए.
9: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर. पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर. देखिए सातों दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें.
20: SBS South Asian plays

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: SBS News इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
2: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
3: SBS स्पोर्ट, खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
4: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील। और एडब्रेक से पहले हमने आपको एक रिपोर्ट सुनाई थी जिसमें बात हो रही थी कि कुछ माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में एक अध्ययन में पता चला है कि उन्हें बहुत कम वेतन मिल रहा है जो लीगल नहीं है, और वो बिना किसी सुपर के काम कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट को सुनते हुए हमारे एक लिसनर ने मैसेज किया है, वो अपना अनुभव साझा करते हैं बिना अपना नाम बताए कि एक होटल का नाम लेते हुए, रेस्टोरेंट का नाम लेते हुए बताते हैं कि वो जानते हैं कि ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर ऐसा होता है और इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हमने अपने शो में आपसे एक कॉन्टेस्ट सवाल पूछा था कि है जवानी तो इश्क होना है जो मूवी है, उसके जो नई मूवी है उसके डायरेक्टर का नाम क्या है। 04397997667 हमारा नंबर है, अपने मैसेजेस भेजते रहिए। कुछ लोगों के और मैसेजेस आए हैं, पीयूष शाह, ब्रजेश, हिमलता पुरोहित जी, रीतल और राजेंद्र वोरा जी ने भी मैसेज किया है। और एक ये मैसेज आया था कि ये कॉन्टेस्ट सवाल रिपीट कर दीजिए, शायद मिस हो गया था, तो उनके लिए मैंने रिपीट कर दिया है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि है जवानी तो इश्क होना है इस मूवी के डायरेक्टर कौन है। 04397997667 पर अपना मैसेज भेज दीजिए। और ये ज़रूर याद रखिए कि आपको अपना नाम और अपना ईमेल आईडी ज़रूर इसमें लिखना है, क्योंकि अगर आपका जवाब सही हुआ और अगर आप लकी विजेता हुए तो हम आपको उस पर टिकट भेज पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया एक गाने का, उससे लौट कर वापस आएंगे और फिर सुनेंगे एक और रिपोर्ट।

0: आप बने हुए हैं SBS हिंदी पे। मेरा नाम है नबील और एक मैसेजेस हमारे पास आए जा रहे हैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ लोग जो पहली बार में अपना ईमेल आईडी या नाम लिखना भूल जा रहे हैं, वो एक और SMS भेज दे रहे हैं जिसमें सिर्फ नाम है और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको ट्रैक करना। तो अगर आप प्लीज़ एक ही मैसेज में कॉन्टेस्ट का जो सवाल है उसका जवाब और अपना नाम और ईमेल आईडी लिख दें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा आपकी एंट्री को डर करने के लिए। तो अगर आपने गलती से कोई एक चीज़ छूट गई आपसे तो आप प्लीज़ एक नया SMS कर दीजिए। 04397997667 हमारा नंबर है और कॉन्टेस्ट का सवाल यह है कि है जवानी तो इश्क होना है जो नई मूवी है वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की, उसके डायरेक्टर कौन है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जब तक आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट सुनते हैं। क्या भविष्य में कीमतों में होने वाले झटकों से हमें बचाने के लिए कानून में और अधिक सुधार की ज़रूरत है? प्राइस गॉजिंग और फ्यूल प्राइस शॉक के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं? SBS एग्जामिन्स के इस अंश में बात इसी विषय पर है और यह अंश आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं अनीता अब्रार।
1: Price gouging is for sure what's happening. It's what Australia's become now, all about price gouging.
2: I think the prices have been hiked prematurely. I think a lot of the petrol companies saw that the war with Iran was happening and they thought that they could straight away raise the prices without actually waiting to see how that panned out.
3: I think there's always been price gouging in petrol. The service stations have been in cahoots for years.
4: ऑस्ट्रेलिया सरकार ने फ्यूल संकट के दबाव को कम करने में मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें फ्यूल एक्साइज में कुछ समय के लिए कटौती और प्राइस गॉजिंग से जूझने के लिए ACCC को अधिक अधिकार देना शामिल है। लेकिन क्या ये कदम काफी हैं?
5: Treasurer, you've directed the ACCC to crack down on fuel price gouging. But price gouging is not illegal in Australia.
4: ये हैं क्योंग की स्वतंत्र सांसद मोनिक रायन, जो मार्च के आखिर में क्वेश्चन टाइम के दौरान पार्लियामेंट में बोल रही हैं। SBS एग्जामिन्स के इस अंश में हम प्राइस गॉजिंग पर नज़र डालते हुए पूछ रहे हैं कि भविष्य में फ्यूल प्राइस शॉक के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं। नमस्कार, और SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। ये हैं ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के सीनियर इकोनॉमिस्ट मैट ग्रुटनॉफ। उन्होंने SBS एग्जामिन्स को बताया कि 2022 में यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले के बाद इंस्टीट्यूट को ऑस्ट्रेलिया में युद्ध की आड़ में मुनाफा कमाने और कीमतों में बढ़ोतरी के मामले मिले। इसका अर्थ है कि कुछ कीमतें सैलरी खर्च और प्रॉफिट मार्जिन को कवर करने के लिए जितनी बढ़नी चाहिए थी उससे अधिक बढ़ गईं। ग्रुडनॉफ का कहना है कि कीमतों से जुड़े हमारे कानून ठीक से समझे नहीं गए हैं।
6: Most people don't know that, but it is not illegal to price gouge. If a firm sees that everybody's talking about price increases and they decide on the back of that to increase their prices even though their costs haven't got up, that's perfectly legal. What is illegal is if firms all get together and fix the price formally, and it is also illegal to mislead consumers. So if firms go out and say, I'm only increasing my prices by the increase in costs, if that's not true, then that's illegal.
4: अप्रैल की शुरुआत में ACCC ने कहा कि 70% से अधिक फ्यूल सरचार्ज की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए वो दूर दराज और रीजनल ऑस्ट्रेलिया के सप्लायर्स की जांच कर रहे थे। शहरों में कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट और ट्रैवल कंपनियों में लेवी के तौर पर फ्यूल सरचार्ज की भी रिपोर्ट्स मिली। कंज्यूमर्स और छोटे बिजनेस को अपनी चिंताएं बताने के लिए बढ़ावा देते हुए ACCC चेयर जीना कैस गॉटनिप ने कहा कि बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटर से अलग होकर कीमतों और लेवी के बारे में फैसले लेने की आवश्यकता है। कॉम्पिटिटर्स द्वारा कीमतों का कोऑर्डिनेशन कॉम्पिटिशन कानून का गंभीर उल्लंघन है। SBS एग्जामिन्स के साथ साथ SBS नेपाली, SBS चाइनीज में हमारे सहयोगियों ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों से चल रहे ईंधन संकट और सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में सुना।
3: Australia doesn't have much competition. Yeah, we're appalling compared to the rest of the world.
7: If they could focus on making sure the petrol stations, they make their price almost similar instead of randomly hiking the price, I think that will be more beneficial.
4: विशेषज्ञों का कहना है कि हेल्दी कंपटीशन प्राइस बढ़ाने का एक एंटीडोट है, लेकिन क्या होगा अगर किसी इंडस्ट्री में कुछ ही सप्लायर हों?
8: A challenge we have in Australia, we have fewer firms supplying us, and so we see that in petrol, we see that in banking, supermarkets. These companies have market power. And so when you only have a few players in a market, the lack of competition, the lack of entry also means you'll get higher prices.
4: Professor David Byrne, Melbourne University mein economic research ke research chair hain. उन्होंने SBS Examines को बताया कि भले ही कंपटीशन की कमी एक मुद्दा है, लेकिन हर बार कीमत में बढ़ोतरी प्राइस गॉजिंग नहीं होती है, और किसी भी गलत काम को साबित करने के लिए आपको असल में बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती है।
8: If we had the relevant rich demand data on what firms, what their revenues look like and what their demand looks like when they change their prices for bread, for petrol, for electricity. And if we had a better idea of what their underlying costs of supplying us that bread or that electricity are, then we would be in a position to test.
4: उन्होंने ये भी कहा कि कंज्यूमर के तौर पर हम कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे संभावित प्राइस गॉजिंग से निपटने में मदद मिले.
8: Keeping that conversation going is in itself one way of trying to help consumers be aware that, you know, there's deals out there and that these markets will operate more competitively the more engaged we are.
4: ACCC लोगों को पेट्रोल की कम कीमतें जानने के लिए न्यू साउथ वेल्स में फ्यूल चेक या सर्विस विक्टोरिया जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देता है. पेट्रोल स्पाई एक और बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल प्राइस मॉनिटरिंग ऐप है. इसके संस्थापक एंड्रे फिरसोफ ने SBS रशियन को बताया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद से उन्होंने यूजर ट्रैफिक में 6 से 8 गुना की बढ़ोतरी देखी. उन्होंने कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कंज्यूमर्स के लिए संभावित प्राइस गॉजिंग से निपटने का एक और तरीका है.
9: We have hundreds of thousands of people using the service every day, and I suppose that's exactly the reason why people use the service.
1: It's basically gone to hell in a handbasket. It's not good, is it, really? Expensive, and what can we do? Nothing but pay it. Or don't drive.
10: It's affecting us because some of the customers, they start to prefer buses or trains rather than using the taxi.
11: I got the bus here for a start. I didn't drive. I'm obviously not going to do long trips, just driving locally, and I'm not panicking about it, really.
4: तो लोग भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? मोनाश यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबल मोबिलिटी और सेफ्टी रिसर्च के हेड एसोसिएट प्रोफेसर बेन बैक ने SBS एग्जामिनर्स को बताया कि मौजूदा फ्यूल संकट ऑस्ट्रेलिया में कारों पर निर्भरता को दिखाता है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में 50% लोगों की पहुँच भरोसेमंद और आसानी से मिलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं है.
12: The systems and urban environments that we've created mean that we don't really provide Australians with alternative, affordable, safe and healthy modes of transport. And that's the real opportunity here.
4: Australia Institute ke Matt Goodenough ne kaha ki bhavishy mein keemton mein hone wale jhatkon se hame bachane ke liye kanunon mein aur adhik sudhar ki avashyakta hai.
6: The government is introducing legislation to stop price gouging, but only in one industry, supermarkets. Now the big question is, why doesn't the government then extend that to all industries?
4: और प्रोफेसर बर्न ने सुझाव दिया कि बिजली के सोर्स में विविधता लाने के लिए तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए डिमांड साइड रेजिलियंस बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
8: In a country that has renewables with sun and solar, like we are like the oil dominant equivalent for renewables, and it's all produced onshore. If you do start tilting transportation sectors towards renewable produced electricity, you get robustness then to these world oil price movements.
4: SBS Nepalese, SBS Russian aur SBS Chinese ki atirikt reporting ke saath SBS Examine se Leda Shwez aur Dennis Fang aur SBS Hindi ke liye is ansh ko prastut kiya Anita Barar ne.
0: एस बी एस हिंदी पर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमने आज एक रिपोर्ट प्ले करी थी जिसमें ये बात हुई थी कि माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं उनको एक रिसर्च में पता चला है कि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और कई बार उनको सुपर एनुएशन और जो बाकी बेनिफिट्स होते हैं, लीगल बेनिफिट्स होते हैं, वो उनको नहीं मिल पाते हैं. हमारे पास कई मैसेजेस इस पर आए हैं और एक लिसनर ने मैसेज किया कि हम जब भी न्यू माइग्रेशन करके ऑस्ट्रेलिया आए थे तब एबीएन पे अपने वेजेस लेने के लिए मजबूर हुए थे जिसमें हमें कोई सुपर एनुएशन या वीकेंड पेनल्टी नहीं मिलती थी और कुछ भी नहीं मिला था और ये पूरे एक साल से ज़्यादा दिन उन्होंने वहाँ काम किया था. आपको भी अगर ये रिपोर्ट एक बार फिर से सुनिए तो आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर जा सकते हैं. चलिए आगे बढ़ेंगे और एक गाना और सुनेंगे, उसके बाद एक एड ब्रेक लेंगे और फिर शो की आखिरी रिपोर्ट. सुनते रहिए SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील.

0: दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं। सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
1: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
2: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
3: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
4: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज आया है क्लाइड से, राजेश जी लिखते हैं कि अनीता ब्रार जी का फ्यूल प्राइसेस पे जो पॉडकास्ट हमने अभी सुना वो उनको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपके मैसेज का और अप्रिसिएशन का, और इससे हमें और हमारा मोरल बूस्ट होता है कि हम और कम्युनिटी स्टोरीज़ और आपके लिए अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बना कर आएँ। चलिए अब आखिरी रिपोर्ट का वक्त आ गया है। आज ट्यूज़डे है जिसमें हम फैसल फरीद की एक रिपोर्ट कर आते हैं और ये इंडिया से कोई ना कोई कहानी होती है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के आशीष जोशी एक छात्र हैं और जानवरों के रेस्क्यू में सक्रिय हैं। अनुमान है कि वो अब तक करीब 400 बेजुबान जानवरों को बचा चुके हैं। कई बार उन्हें गहरे कुएं या गड्ढों में उतरकर जोखिम भरे रेस्क्यू भी करने पड़ते हैं। उनकी पूरी कहानी क्या है, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में जो लेकर आ रहे हैं आपके लिए फैसल फरीद SBS हिंदी पर।
5: अपनी जान तो सब लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाले आशीष जोशी अपनी जान को खतरे में डालकर बेजुबान जानवरों को बचाते हैं। वो एक स्टूडेंट हैं लेकिन एनिमल रेस्क्यू करते हैं। इसमें लेपर्ड, वुल्फ, ब्लैक बक, नील गाय इत्यादि होते हैं। ये नॉर्मल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होते हैं। कहीं गहरे कुएं में उतरकर लेपर्ड को बचाना हो, गहरे गड्ढे में जाकर कई क्विंटल की नील गाय को निकालना हो, मेन होल में अंदर जाकर डॉग को बचाना हो, ये सब आशीष जोशी करते हैं। अब तक वो 400 के करीब बेजुबान जानवरों को बचा चुके हैं। आशीष का सफर एक डॉग को अडॉप्ट करने से शुरू हुआ, जो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना और इंसानों को कोएग्जिस्टेंस के बारे में समझाना यहाँ तक पहुँच चुका है। आज आशीष के पास दूर दूर से कॉल्स आते हैं और वो फायर डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से मिलकर ये काम करते हैं। आशीष बताते हैं।
6: मेरा नाम है आशीष जोशी और मैं रहता हूँ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे जो है एनिमल्स के लिए बहुत निग्लिजिबल फैसिलिटीज है, आप ना के बराबर बोल सकते हो। कि जैसे मैं बचपन से देखते आ रहा था कि मुझे डॉग एडॉप्ट करना था, बट ड्यू टू स्कूलिंग एंड ऑल लाइक 10th बोर्ड्स 12th बोर्ड्स, पेरेंट्स वेयर लाइक कि पहले पढ़ाई कर ले फिर ये सब करेंगे, तो ऐसे ही ये जर्नी शुरू हुई। 10th में मैंने जब फर्स्ट मेरा डॉग एडॉप्ट किया, तब से मुझे जानवरों के प्रति उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके स्ट्रगल्स क्या है, उनके बारे में पता चलने लगा एज आई गॉट डॉग एट माई हाउस इट्सेल्फ। तो वैसे ये काम आगे बढ़ता गया है, फिर डॉग्स, कैट्स, फिर काउज, जो स्टे एनिमल्स हैं मेरे एरिया में, मेरे सिटी में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके लिए काम करने लगा, आवाज उठाने लगा, या फिर उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी तो ट्रीटमेंट करने लगा, रेस्क्यू करने लगा। और अभी हम लोग लेपर्ड तक पहुंचे कि लेपर्ड अगर आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरी टीम को कॉल करता है और हम लोग जाके वो लेपर्ड को साइंटिफिकली रेस्क्यू करता है।
5: इस कार्य में आशीष की जान को खतरा भी रहता है। एक जानवर जो गहरे गड्ढे में फंस गया है, जाहिर है वो अपने आप नहीं निकल पा रहा है, तभी बचाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन, थर्मल इमेजिंग इत्यादि का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन खतरा फिर भी रहता है।
6: क्या होता है सर, कोई एनिमल अगर इमरजेंसी में हो तो हम लोग ये नहीं सोच सकते कि अपनी जान को कितना खतरा है, क्योंकि वो अगर बच पाता खुद से तो वो खुद से ही निकल जाता है, बट एज ही इज फोर्स टू स्टक एट द सेम सिचुएशन इन द पेन, जिसको मेडिकल कंडीशन की जरूरत है, कि जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में जाने के लिए हम लोग दो सेकेंड थॉट नहीं ले सकते। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट वी हैव टू गो एंड वी हैव टू रेस्क्यू दैट एनिमल। बट इसके पीछे का साइंटिफिक ये है रीजन कि वी ऑल आर ट्रेन्ड रेस्क्यूअर्स, कि ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग का ट्रेनिंग हुआ है कि कैसा डील करना है विद द इक्विपमेंट्स, विद द टेक्नोलॉजी लाइक थर्मल ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, इंफ्रारेड सेंसर्स, या फिर रैपलिंग इक्विपमेंट्स। तो हम लोग ये टेक्नोलॉजी का, ये इक्विपमेंट्स का यूज करके एनिमल्स को सेफली रेस्क्यू करते हैं, बट उसके साथ साथ ही जो लोग आसपास है, या फिर समझो कि मैं खुद अंदर जा रहा हूँ, तो आई मेक श्योर कि एनिमल और मैं, हम लोग दोनों सेफ रहे, ताकि आने वाले टाइम पे और एनिमल्स को बचाया जा सके।
5: इस वर्ष तक आशीष 400 के करीब जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं। इसमें लेपर्ड, नील गाय, वोल्फ, डॉग्स, बर्ड्स, ब्लैक बक इत्यादि हैं। इनमें कई ऑपरेशन बहुत रिस्की भी थे, कई बहुत दूर भी थे, कई जंगल में थे, लेकिन आशीष जोशी ने इन सब को सफलतापूर्वक किया।
6: जी सर, अभी सिंस द स्टार्ट ऑफ 2026 टिल मे एंडिंग, अपन मे एंडिंग पकड़ के चले तो वी हैव रेस्क्यूड मोर देन 400 वाइल्ड एनिमल्स लाइक नीलगाय, लेपर्ड, ब्लैक बक्स, हाइनास, जैकल्स, वुल्स एंड एन नंबर ऑफ बर्ड्स, जो अलग अलग सिचुएशंस में थे। जैसे बर्ड्स थे, कुछ नायलॉन स्ट्रिंग्स में फंसे थे, कुछ डिहाइड्रेशन था, किसी को सनस्ट्रोक हुआ था, कोई रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हुई थी नीलगाय, कोई हंटिंग के इसमें, हंटिंग के ट्रैप में फंस गया था लेपर्ड, वुल्फ, या ब्लैक बक्स थे जो पानी की तलाश में कुएं में गिर गए थे। अभी ये मंथ में आई हैव रेस्क्यूड मोर देन 22 हर्बीवोर्स लाइक ब्लैक बक्स एंड नीलगाइज हु वेयर फेल इन डीप वेल इन सर्च ऑफ वाटर। बेसिकली आई एम सिचुएटेड इन द जियोग्राफिकल लोकेशन वेयर ह्यूज वाटर क्राइसिस इज प्रेजेंट सिंस ईयर्स, मराठवाड़ा रीजन। तो यहाँ पे इंसानों को भी पानी का इतना स्ट्रगल है, तो आप सोचो जानवर को कितना स्ट्रगल होगा, तो जंगल में रह रहे जो स्ट्रेस है, तो ऐसे जानवर एक एक बूंद पानी के लिए अपनी जान रिस्क में डाल देते हैं और सीधा कुएं में, बस पानी मिल जाए बाकी आगे का आगे देख लेंगे, ऐसे इसमें वो कूद जाते हैं।
5: अब बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। कुछ ये भी है कि मनुष्य अब धीरे धीरे उस तरफ पहुंच गया है जो उन जानवरों का प्राकृतिक घर था। आपस में को एग्जिस्टेंस कम है, कॉन्फ्लिक्ट है, खाने पीने की दिक्कत जानवरों को होने लगी है। ये जिम्मेदारी सभी की है कि इस पृथ्वी को हम जानवरों का भी घर समझें, कुछ एहतियात रखें, तभी चल सकता है। आशीष इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं।
6: सर इसमें दो

0: और ऐसे सिचुएशंस ना हो इसके लिए एज अ इंडिविजुअल हम लोग क्या कर सकते हैं. तो वन थिंग वी कैन गो फॉरवर्ड विद द थॉट ऑफ को एग्जिस्टेंस. जस्ट लाइक अस, हम लोग इस धरती पे रह रहे हैं, हम लोग मतलब अर्थ के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, प्लेस शेयर कर रहे हैं एज ए ह्यूमन, एज ए कम्युनिटी. तो हम लोग को उनको भी कंसिडर उतना ही करना पड़ेगा जितना हम लोग अपने आप को या ह्यूमन कम्युनिटी को करते. जैसे कि मैंने कोई प्लॉट खरीदा है तो वॉट आई कंसिडर एज ए ह्यूमन कि इसका मालिक मैं हूँ, बट इन रियलिटी देर आर एन नंबर ऑफ लिविंग बींग्स लिविंग विद लाइक जनरेशंस वो एरिया में. समझो एक सोसाइटी है, सोसाइटी अभी बनी है, यहाँ पे प्लॉटिंग हुई है, कंस्ट्रक्शन होने वाला है, बट वो सोसाइटी में डॉग्स काफी जनरेशन से रह रहे हैं, एन नंबर ऑफ रेप्टाइल्स हु आर लिविंग देयर सिंस जनरेशंस. तो हमको उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा. कल जाके आपके सोसाइटी में कोई सांप निकलता है तो ही हैज नॉट केम सडनली आउट ऑफ नोवेयर, ही हैवंट फॉलन फ्रॉम द स्काई, राइट. वो वहां पे रह रहा है खाने की तलाश में, वो आ गया है, उसका हैबिटेट खत्म हो चुका है ड्यू टू ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, कॉन्क्रीट जंगल. तो वी हैव टू कंसिडर दोस की जहाँ इंसान है वहां पे आसपास एन नंबर ऑफ एनिमल्स इज गोना कम अप, एन नंबर ऑफ एनिमल्स इज गोना शो अप. ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट देयर प्रेजेंस.
1: छीन कर जमीन उनकी, हम उन्हीं को जानवर कहते हैं, यही सच है. लखनऊ से फैसल.
2: SBS हिंदी पर आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा नाम है नबील और अब आपसे मैं अलविदा लूँगा. उससे पहले एक मैसेज पढ़ दूंगा. धवल जोशी जी का मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि ऑलवेज लव टू लिसन फैसल्स फैसल फरीद रिपोर्ट. हमेशा एक पॉजिटिव कहानी होती है और एक इंस्पायरिंग कहानी होती है. और उन्होंने भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, जिसका सवाल मैं एक बार आखिरी बार इस शो पर दोहरा देता हूँ कि जो नई मूवी है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें वरुण धवन है, मृणाल ठाकुर हैं और पूजा हेगड़े, अगर आप उसके डबल मूवी पास जीतना चाहते हैं तो 04397997 पर लिख भेजिए कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं और अपना नाम और अपना ईमेल आईडी ज़रूर लिखिएगा. चलिए एक आखिरी गाने के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा और मिलूँगा बहुत जल्द एक नए शो में, एक नए दिन एक नए शाम. बने रहिए SBS हिंदी पर.

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा

कक तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चकली चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं क्यों किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay, 'cause I want you to stay, 'cause I want you to stay।

0: साउदेश।
1: नमस्ते बहनोर भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई ना

0: Bollywood.
1: I love Bollywood music.
2: Kicking the morning off the right way. An hour of the best in Bollywood hits. Starting now. It's the Bollywood Session on SBS South Asian.
3: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं

0: क्या खुद को खुदा मानते हो, क्या खुद को खुदा मानते हो। हमें मार तो दिया पर एक शायर को मारने की सजा जानते हो।
1: SBS साउथ एशियन।
2: जो हमसे वफा ढूंढ रहे थे वो खुद ही बेवफा हो गए। हमने सच का आईना क्या दिखाया, वो खफा हो गए, वो खफा हो।